वो अपनी नस्ल को तमाम नस्लों से बरतर समझते हैं, वो नहीं चाहते कि कब नस्ल वाले पिछड़े लोग, निचले तबके के लोग उनके तबके में दाखिल हों। अगर उनको पसंद नहीं है कि अगर किसी को यहूदी बनाएंगे भी तो वो छानबीन के कि वही ऊंची क्वालिटी के घराने का होगा उसी को यहूदी बनाएंगे, वरना किसी को यहूदी बनाने को तैयार नहीं होते। उसके बरक्स ईसाइत की पूरी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई हो जाएं। पहले भी थी, आज भी हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रोपेगेंडा और पब्लिसिटी करते हैं मज़ाहिब के दरमियान वो ईसाई ही हैं, और उसके लिए अच्छे खासे फंड भी खर्च करते हैं, पैसे भी खर्च करते हैं, हथकंडे भी अपनाते हैं, हर हरबा वो इख्तियार करते हैं कि लोग ईसाइत में दाखिल हो जाएं, गरीब इलाक़ों में चले जाएंगे, यहाँ हिंदुस्तान में तमाम कबायली इलाकों में, आदिवासियों में, जगह जगह कभी वो अनाज लेकर के पहुंच जाते हैं, कभी अस्पताल के बहाने पहुंच जाते हैं, कभी स्कूल के बहाने, मुख्तलिफ बहानों से वो दाखिल होते हैं। एनजीओज आमतौर से उसको इस्तेमाल करते हैं अपने मकसद के लिए। मुसलमान यहूदी और ईसाई के बीच की चीज़ है, ना यहूदियों के तरीके से तबलीग का दरवाज़ा बंद रखा है और ना ईसाइयों के तरीके से पूरा। बहरहाल तबलीग के ज़र असर नजरान का इलाका ईसाई हो गया था, और बड़े कट्टर बड़े पक्के मोमिन थे ये लोग। कुरान मजीद में सूरह बुरूज में इनका तस्करा भी है नजरान वालों का, कि जब ये जो है ज़ू नवास यमन का बादशाह हो गया था तो उसने दावत दे दी थी बुत परस्ती की, तुम लोग ईसाइत को छोड़ के दोबारा बुत परस्त हो जाओ, और अगर बुत परस्त नहीं होगे तो बड़े बड़े गड्ढे उसने खोद रखे थे जिसमें आग रोशन थी, इसी में सबको जला करके मार डालेंगे। चनांचे वो है कतला असहाबुल उखदूद, उखदूद यानी गड्ढे, असहाबुल उखदूद गढ़े वाले। नजरान की ईसाइयों ने तय कर लिया कि मरना कबूल है लेकिन मज़हब नहीं छोड़ेंगे। चनांचे जितने भी बड़े बालिग मर्द थे सबको उस गढ़े में डाल दिया गया था, जो बच्चे रह गए थे बाद में दोबारा जवान हुए थे, नस्ल बढ़ी। बहरहाल तो नजरान के ईसाइयों को भी पैगम्बर ने ख़त लिखा था। फतह मक्का से पहले मुसलमानों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी, उनके दावत को, उनके खुदूत को जवाब के काबिल भी नहीं समझा जाता था, क्योंकि उन लोगों को उम्मीद ये थी कि बस दो चार दिन में ये मक्के वाले और मुशरिकीन कुफार मिलके इनका खात्मा कर देंगे। लेकिन फतह मक्का के बाद हालात बदल गए और सबको अंदाज़ा हो गया था कि इनका कोई बाल बीका नहीं हो सकता है, तो लोग अहमियत देने लगे। फिर अब ये ख़त आया है, जवाब तो देना है। जवाब के तौर पर इन लोगों ने एक वफ्द बनाया जिसमें मुख्तलिफ रवायतें हैं, किसी में 10 लोग थे, ज़्यादा से ज़्यादा 70 लोगों का तस्करा मिलता है कि 70 अफराद उस डेलीगेशन में वफ्द में रखे गए थे जिसमें सब चोटी के लोग थे और पहुँचे हुए लोग रखे गए थे वफ्द में, ये जा कर के पैगम्बर से बातचीत करें भी क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए। चुनांचे जब ये लोग अलैहिस्सलाम जब ये लोग आए हैं तो मदीने के बाहर इन्होंने पड़ाव डाला, लिबास चेंज किया, बेहतरीन कीमती तरीन चमकता हुआ कपड़ा पहना, सोने के जेवरात, हीरे की अंगूठियाँ सज धज करके आए ताकि इस तरीके से रोक डाल सकें मुसलमानों के ऊपर और अपना अपनी पोजीशन बना सकें। दाहिर सी बात है कि मादी सोच रखने वाले अफराद अमूमन तड़क भड़क कपड़े और जर्क बर्क गाड़ी ही पहने, आज भी वही हाल है। आज भी अगर कोई इंटरव्यू देने जाता है किसी अच्छी कंपनी में तो पहला काम यही एक अच्छा कपड़ा, चाहे उसके पास ना हो बेचारा किसी से उधारी मांग के पहन के जाएगा। अच्छी गाड़ी पर, बहुत ज़हीन हैं आप, बहुत आपके पास इल्मियत है, बड़ी काबिलियत है, अगर आप साइकिल पे जाएंगे तो आपका इंटरव्यू भी कोई नहीं लेगा। अब आप ये जो है बिज़नेस डील के लिए अगर कहीं जाना चाहते हैं तो जब तक अच्छी गाड़ी चमचमाती गाड़ी ना हो तो आपको इस काबिल भी नहीं समझेगा बंदे मुकाबिल कि वो आपसे बात भी करें, चाहे बहुत ही अच्छा प्रपोजल लेकर के आप गए, बात ही कोई नहीं सुनेगा आपकी। तो आज भी यह है कि लोगों की निगाहें कपड़ों पे होती हैं, लोगों की निगाहें घड़ी पे होती हैं, लोगों की निगाहें गाड़ियों पे होती हैं, खोपड़ी पे किसी की निगाह नहीं होती कि अंदर क्या है। ये चीज़ उस ज़माने में भी थी, मगर ये किसकी है, ये उनके लिए है जो मादी फिक्र रखते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी को दुनिया ही तक महदूद समझा है। ये आए मदीने में दाखिल हुए, मस्जिद नबी में असर के वक्त पहुँचे हैं, बाजे गाजे के साथ पहुँचे, और आने के बाद पहली डिमांड ये कर दिया कि मस्जिद में हमें भी इबादत की

इजाज़त दी जाए, हम भी इबादत करना चाहते हैं, पैगंबर ने दी इजाज़त। अब जब इजाज़त की तो उनके यहाँ सिंपल इबादत तो होती नहीं है, टन टन टन सब नाकूस और बाजा गाजा ये सभी कुछ शामिल होता है। अब जब असहाब ने ये सब देखा कि मस्जिद में सारे हंगामे कर रहे हैं तो बाद को गुस्सा आ गया, आप ऐसे बाहर चाहा सब तोड़ फोड़ के फेंक दें, हमला करें इनके ऊपर, पैगंबर ने मना कर दिया। खैर उनकी इबादत ख़त्म हुई, अब उस इंतज़ार में है कि पैगंबर हमसे मिलेंगे, हमारा इस्तकबाल करेंगे। पैगंबर ने उन्हें घास ही नहीं डाली, उनकी तरफ देखे बगैर मस्जिद से निकल गए। अब बड़े परेशान हुए कि ये क्या भाई, हम तो उनके ख़त के ऊपर आए हैं, हमें कोई तवज्जो ही नहीं, वो समझ रहे थे कि हमारी शान और शौकत देख के तो हाथों हाथ लिया जाएगा, या कोई घास ही नहीं डाल रहा है, बड़े परेशान हुए, वजह क्या है, क्या हुआ है। तो एक सहाबियों से पूछा, साहब से पूछा कि क्यों इस तरीके से इतनी बेरुखी क्यों बरत रहे हैं, किसी की समझ भी नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है। कि लोग पैगंबर की हदीस तो जानते थे, पैगंबर का मिजाज नहीं पहचानते थे। मिजाज शनासी और है और हदीस शनासी, मुमकिन है आप किसी खतीब के बयानात को पूरा हिफ्ज़ कर लें, उसके मिजाज को कितना पहचानते हैं, उसकी तबीयत से कितना आशना है। अब किसी को पता नहीं, आखिर में एक सहाबी ने कहा कि देखो अगर जानना चाहते वो जो बैठे हैं उनके पास चले जाओ, वो बता देंगे वो कौन है। वो मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हैं। आए हाँ कि अमीरुल मोमिनीन का शुमार असहाब में नहीं होता, एक शख्स तादा तादा मुसलमान हुआ था, पैगंबर के पास आया कि हुजूर आप अपने असहाब की एक फहरिस्त बता दीजिए हमें, आपके ख़ास ख़ास सहाबी कौन हैं। उन्होंने गिरा दिया, फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ है, मगर उसमें उस फहरिस्त में कहीं मौला का नाम नहीं था। तो ताज्जुब हुआ कि अली का नाम नहीं इसमें, तो उसने कहा हुजूर आपने सबका नाम गिना दिया, इसमें अली का तो नाम ही नहीं, वो तो हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो हुजूर ने फरमाया तुमने सहाबियों का नाम पूछा है, अली सहाबी नहीं, अली मेरी जान है, अली नफ्स से पैगंबर है। तुमने सहाबा का नाम पूछा था, मैंने सहाबा का नाम बता दिया, जिगर जिगर है दिगर दिगर है, दोनों में फ़र्क है। खैर मौला के पास आए, मौला ने कहा कि तुम किससे मिलने आए थे, तो पैगंबर से, लगता तो नहीं है, लग रहा है कि तुम बादशाह से मिलने आए हो, पैगंबरों से मिलने का यही अंदाज होता है, तुम दौलत की धौंस जमाने आए हो उन लोगों पर जिनकी निगाह में दुनिया की दौलत की हकीकत यह है। कि वो फरमाते हैं कि इन्ना दुनिया कुम हाज़िहि इंदी लअहवनु मिन इज़ामे लअहवनु इंदी इराक खिंज़ीरिन फी यदे मजज़ूम। हमारी निगाह में माले दुनिया, ये दुनिया सूअर की उस हड्डी से भी कमतर है जो कोढ़ी के हाथ में। वालेकुम सलाम। तो कोढ़ी के हाथ में हो सुअर, एक तो सुअर फिर हड्डी, वो भी कोढ़ी का हाथ, कोढ़ी के हाथ में अच्छी चीज़ भी हो तो कोई छूने को तैयार, करीब जाने को तैयार नहीं होता। जिनकी निगाह में माले दुनिया इतना पस्त है, तुम उन्हें सोने से मरूम करने आए हो, तुम उन्हें जर्फ बर कपड़ों से मरूम करने के, जाओ अपना असली कपड़ा पहन करके आओ, सादा सिंपल आओ, गए गबारा वही कपड़ा जिसको मदीने से बाहर ये अपने बदन से उतार दिया था, दोबारा उसी को पहन करके हुजूर की खिदमत में आए। अब जो आए तो हुजूर में खड़े होकर के गले लगाया, इस्तकबाल किया, इज्जत से बैठा रहा, खैर बैठ गया, बातचीत शुरू हुई, क्या चाहते हैं आप हमसे। हुजूर ने कुछ नहीं, हमने तुम्हें तौहीद की दावत दी है, ईमान की दावत, कहो तो पहले से हमारे पास है, हम तो आपसे पहले से मुवाहिद हैं, आप जुमा जुमा आठ दिन हुआ आपको आए हुए, हम तो कब से हैं, अल्लाह को भी मानते हैं, क़यामत को भी मानते हैं, फरिश्तों को भी मानते हैं, जिब्रील को भी मानते हैं, रूह कुदस को भी मानते हैं, अंबिया को भी मानते हैं, किताबों को भी मानते हैं, तौरात को भी मानते हैं, सब चीज़ों को मानते हैं हम तो। हम जाइए किसी और को दावत दीजिए, हमें क्या दे रहे हैं, हम तो मुवाहिद पहले ही के हैं। हुजूर ने कहा हाँ तुम दावाए तौहीद रखते हो मगर तुम्हारी तौहीद फासिद है। तीन चीज़ें पैगंबर ने वहाँ पेश की कि तुम्हारी गलत है। एक नंबर एक, तौहीद में तुम्हारी खोट है, तुम कहते हो अल्लाह एक भी है, अल्लाह तीन भी है, तीन एक है, एक तीन है, ये रियाजियात तो किसी की समझ में आती ही नहीं है। एक दफ़ा कहते हो अल्लाह वहदहु ला शरीक है, फिर कहते हो कि अल्लाह ने मरियम के अंदर हुलूल कर लिया है, फिर कहते हो जो कि मरियम से ईसा पैदा हुआ ज़्यादा वो भी

ये अल्लाह है, तो तीन अल्लाह हो जाते, अल्लाह, मरियम और ईसा, ये साथ तुम लोग ये जो है मसीहुल्लाह ही हो। और फिर ये दावा करते हो कि ईसा जो है इब्नुल्लाह भी है, अल्लाह के बेटे भी हैं, और तुम सलीब की पूजा करते हो, सलीब की इबादत करते हो, और जो है सूअर का गोश्त खाते हो। सलीब यानी वो चीज़ जो उनके ख्याल में, जिस पर जनाब ईसा को फांसी दी गई थी, तो हमेशा उस अलामत को अपने साथ रखते थे और उसकी इबादत करते थे, उसकी परस्तिश। हर चर्च में आपको सलीब मिलेगी, हत्ता वो याद रहे गले में भी लटकाते रहते थे। हमारे यहाँ तो खैर फैशन में आ गई है, पर असल में वो सलीब ही की अलामत थी, या इसको याद रखने के लिए हज़रत ईसा को फांसी दी गई है। जबकि क़ुरान उसकी तकदीब करता है, माँ कतलू हो व माँ सलबू हो वलाकिन रफ़ाहु वलाकिन शुब्बिहा बिहिम व रफ़ाहुल्लाह, अल्लाह ने उठा लिया था उनको। एक शख्स जो ईसा की शक्ल बन गया था, उन्हीं में से जो दुश्मन ईसा थे, उसको फांसी दी गई थी, न कि ईसा को। ईसा को अल्लाह ने बचा लिया था। लिहाजा हमारे यहाँ सलीब की मुखालफत इसलिए की जाती है कि सलीब यानी कुरान को झुटलाना, बहुत से उलमा टाई पहनना हराम करार देते थे, क्योंकि एक ज़माना, अब तो खैर किसी को पता भी नहीं कि टाई के पीछे क्या हिस्ट्री है, एक ज़माना था जब टाई सलीब की यादगार के तौर पर पहनी जाती थी, यानी कुरान को झुटलाना। कुरान कहता है फांसी नहीं हुई है। पर उन लोगों ने दो चीज़ें तो छोड़ दी, सलीब और सूअर के गोश्त पर तौहीद पे आकर टिक गए कि क्यों, इसमें क्या गलती है, आप ईसा को क्या मानते हैं। हुज़ूर ने फरमाया हम ईसा को रसूलुल्लाह मानते हैं, तुम लोग इब्नुल्लाह मानते हो, इब्नुल्लाह तो है ही। अब ये बताइए कि ईसा का बाप कौन है कोई ईसा का बाप? अब जिस बच्चे का कोई बाप ना हो, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो अलयाज़ बिल्ला उसकी माँ बदकारा है, उसकी माँ बदकारा है जो बगैर बाप का बेटा लिए घूम रही है, और या अगर वो बदकारा नहीं है, जिसका मतलब है कि उसका बाप अल्लाह है। तो हजरत मरियम के किरदार पर तो आप भी शक नहीं करते, मरियम अज़रा आप भी मानते हैं, तैयबा और ताहरा है। हम मुसलमान भी जनाब मरियम की क़दासत के तो कायल हैं ना, तहारत के कायल हैं, अलयाज़ु बिल्लाह उनके दामन पर कोई धब्बा नहीं है। बड़ा अच्छा मनसूबा बना के आए थे कि पैगम्बर की ज़बानी कहला लें कि वो अल्लाह के बेटे हैं। तो ईसा का इंसानों में कोई बाप नहीं है और मरियम पाक दामन है, इसका मतलब है कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, उनका बाप कौन? अल्लाह। कुरान की आयत नाज़िल हो गई, इन्ना मसला ईसा का मसले आदम खलक़हु मिन तुराब, ईसा का मामला आदम जैसा है। आप कहते हैं कि ईसा इब्नुल्लाह है, क्यों? इसलिए कि ईसा का इंसानों में कोई बाप नहीं है, तो आदम का कौन बाप है? अगर बाप न होना सबब बनता है कि उसका बाप अल्लाह हो, तो तुम्हें आदम को भी तो अल्लाह का बेटा मानना चाहिए। अरे ईसा के कम से कम माँ तो मौजूद हैं, आदम के तो ना बाप है ना माँ है, कुछ भी नहीं है। तो अगर बाप न होने की बिना पर कोई इब्नुल्लाह बन सकता है, अल्लाह का बेटा बन सकता है, तो जनाब आदम को बदरजे औला इब्नुल्लाह, जबकि तुम आदम को इब्नुल्लाह नहीं मानते हो। तुम्हारी अपनी मंत्री के तहत अगर होता तो तुम पहले आदम को मान लेते फिर ईसा को मानते, तक बात भी थी। अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया, फिर मकाल अल्लाह कुन फयकुन का हो जा, हो गया। अल्लाह चाहे तो माँ बाप किसे बच्चा पैदा करे, चाहे तो सिर्फ माँ से पैदा कर दे, और चाहे तो बगैर माँ बाप के पैदा कर दे, खालिक तो वो है असल में। अब ये वो मकाम था कि वो लाजवाब हो गए कि उनके पास जवाब नहीं था। लेकिन जिंदाबाद हठधर्मी, जिंदाबाद कठोज्जती, इसका तो कुछ चारा ही नहीं ना है। लाजवाब हो गए, कुछ देर तक सर झुकाए बैठे, तो कहते हम आपकी बात से मुतमईन नहीं हुए। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प जुमला होता है, हम मुतमईन नहीं हुए। जैसे अमरीका है, एटमी एनर्जी के बारे में सारा ईरान से तब गए गुफ्तगू, दलीलें, सबूत, सब कुछ, कोई उनके खिलाफ आज तक अमेरिका सबूत नहीं पेश कर सका कि ये एटम बम बना रहे हैं। मगर उसके बाद देखे थे हम मुतमईन नहीं हो पाए, तो अब क़यामत तक आप मुतमईन नहीं हो पाएंगे, ये हठधर्मी है ना। नहीं, हम जो है मुतमईन नहीं हुए। अभी इस अदम इत्मीनान का जवाब तो देना है। अगर तुम मुतमईन नहीं हुए हो, एक दफ़ा तो हम मुतमईन हो गए हैं कि आप हक पर, आप सच बोल रहे हैं।

मगर हम मान नहीं रहे। हटधर भी यही तो है ना। एक दफ़ा कि वाकयान मुतमईन नहीं, उसके कैसे पता चले कि ये वाकयान मुतमईन नहीं हुए हैं या मुतमईन हो गए हैं मगर हठधर्मी से काम ले रहे हैं। तो कुरान की याद आए आयत आ गई कि फमन हाज जकाफी है मिन बाद मा जाअका बई मिन अल इल्म। मेरे हबीब जब आपके पास इल्म और यकीन आ चुका, कतई दलीलें यकीनी दलीलें आ गईं, उसके बाद भी अगर कोई आपसे कट हुज्जती कर रहा है, मुहाज्जा कर रहा है, हठधर्मी से पेश आ रहा है, तो उसका एक रास्ता है, उसका एक हल है। फ़कुल तआलो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल। उसका हल है मुबाहला। देखिए दावत इस्लाम जब दी जाती है तो उसके तीन चार मरहले हैं। पहला मरहला होता है तो पैगाम दे देना, उदउ इला सबील रब्बिक, अपने परवरदिगार में बुलाओ, मिशन पेश कर लोगों के सामने, अलबत्ता बिल हिकमत वल मौइज़त अल हसना, हिकमत और मौज़ा हसना के जरिए दावत को पेश किया कि जी मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह एक है और फलां, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद, न कोई इसका बाप है न कोई उसका बेटा है। अब या तो मानने वाले मान लेंगे या इनकार करेंगे। मानने वालों ने आपकी बात मानने के बजाय आपकी दलीलों को काटना शुरू कर दिया। एक दलील उन्होंने दिया, एक दलील आपने दिया, एक दलील उन्होंने दिया, एक दलील आपने दिया, मुजादला इसे कहा जाता है इल्मी जबान में। अब ये वो है जहाँ के ऊपर टकराव शुरू हुआ। पहले मरहले में टकराव नहीं है, सिंपल हमने अपनी बात रखी, आप या मानेंगे या ठुकरा देंगे। लेकिन जब बहस शुरू हो गई, अब यहाँ शुरू हो गया मुकाबला। मुकाबला जहाँ पर तीन तरह का है। पहला मुकाबला क्या, ये जो है मुजादला। यहाँ पर मुजादला में दलीलों की जंग है, जंग है। असलहा क्या है, दलील। एक दलील हमने दिया, एक दलील आपने दिया, फिर हमने दिया, फिर आपने दिया, आपने हमारी बात काटा, हमने आपकी बात काटा, दोनों पूरा जोर लगाए हैं कि मौज इसकी ऊंची होती है। ये जो है मुजादला कहलाता है। और एक है मुकातला, जहाँ असलहों की जंग होती है, तलवारों की जंग होती है, बंदूकों की जंग होती है। जंग वो भी है, जंग ये भी है। वो दलीलों की जंग है, ये असलहों की जंग है। और एक है मुबाहला, मुबाहला दुआओं की जंग है। आप हमारे खिलाफ दुआ करेंगे, हम आपके खिलाफ दुआ करेंगे। लानत मुबाहले में जो लानत कही जाती है, ये लानत को गाली वाली नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं किसी को मलऊन कह दीजिए तो बड़ा बिगड़ जाएगा, खफा हो जाता है। नहीं, मलऊन वो मलऊन यानी जो रहमत खुदा से दूर है। अगर आप किसी को कह दीजिए कि आप रहमत खुदा से दूर हैं, इतना बुरा नहीं लगेगा। उर्दू में अगर कह दीजिए कि आप रहमत खुदा से दूर हैं, उसको बुरा नहीं लगेगा। पर अगर अरबी में कह दीजिए आप रहमत खुदा से दूर हैं, बहुत बुरा लगेगा। मान हमारे बरादरा ने सुन्नत, हम लोगों से खफा है, आप लोग तो गाली बकते हैं, लानत भेजते हैं। लानत गाली नहीं है। जो हम कहते हैं अल्लाहुम्मा लान फलां, क्या मतलब है, खुदाया उसे अपनी रहमत से दूर कर दे, बस। और कोई माना इसका और कुछ नहीं है। एक दुआ हम करते हैं, खुदाया तो इस पर अजाब नादिल कर दे। आप किसी से कहिए कि अल्लाह तुझ पर अजाब नादिल कर दे, इतना बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर वो कहेंगे अल्लाह तुम पर लानत, खुदा की तुम पर लानत हो, अरे बहुत बहुत बुरा मानेंगे, आप यहाँ पर लानत भेजती। तो लानत कोई गाली वाली नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, सादा सी चीज़ है, दुआ। तो पैगंबर ने फरमाया कि अब जब तुम कठहुज्जती पे आ गए हो, तो इस्लाम कहता है कि जहाँ से कठहुज्जती शुरू हो जाए वहाँ से बहस को रोक दो। अहम चीज़ है, जिदाल की एक हद है, दलीलों की जंग की एक हद है। गैर मुय्यना जंग नहीं है कि लड़ते चले जाओ, रात भर लड़ते जा रहे, ना ये इनकी मान रहे हैं ना वो उनकी मान रहे हैं, दोनों अपनी मौज ऊँची करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इस्लाम कहता है कि जब ये देख लिया कि मद्दे मुकाबिल हठधर्मी पर आ गया है तो छोड़ दो। दाइल मेरा व इन कुंता मुहक्का अलैहिस्सलाम, मेरा यानी अपनी बात को ऊंचा साबित करने के लिए बहस करना। एक दफ़ा बहस की जाती है हक को समझने और समझाने के लिए, वो ज़रूरी है। लेकिन जब ये हो जाए कि अब हक व बातिल की बात नहीं, अब तो फकत मोश की बात आ गई है, तो हमारे यहाँ हुक्म यह है कि दाइल मेरा, मौला कायनात का इरशाद है कि दाइल मेरा व इन कुंता मुहक्का, जहाँ मेरा दिखावा मोच ऊँचा करना, अपने को सही साबित करना चाहे हम

गलत है मगर साबित करके देंगे कि हम सही हैं, मानेगी नहीं। जब इस बात का एहसास हो जाए तो बहस को छोड़ दो, पहले वहाँ से भी आ गया पैगंबर, अब इसके बाद इनसे बहस न कीजिए, अब मुबाहला होगा। अरबों में ये रस्म रायज थी पहले से, इस्लाम नहीं लाया है, मुबाहला पहले भी होता था। यानी लोग किसी मसले पर जब इत्तेफाक नहीं हो पाता था तो आते थे कि हम खुदा से फिर दुआ करते हैं कि जो झूठा है, जो गलत है, जो बातिल है, अल्लाह उस पर अज़ाब नाज़िल कर दे। ये रायज था उनके दरमियान। उसी चीज़ को कुरान ने भी कहा कि फमन हाजका फीहि मिन बाद मा जाअका मिन अल-इल्म, पैगंबर जब आपके पास इल्मी दलीलें आ गईं फिर भी नहीं मानते हैं, दो दो चार की बात कह दी गई कि अगर तुम ईसा के बाप न होने की बिना पर उनको इब्नुल्लाह कहते हो तो आदम को इब्नुल्लाह क्यों नहीं कहते हो? आदम के भी तो बाप नहीं है, ना बाप है ना माँ, इनके तो कम से कम माँ हैं। अगर कोई इब्नुल्लाह कहलाने का हकदार और मुस्तहक है तो सबसे पहले हजरत आदम है, तुम उन्हें नहीं कहते हो। इसका मतलब है कि बाप न होना इब्नुल्लाह होने की दलील नहीं है, बात क्लियर हो गई थी। जब दलील आ गई ये नहीं मानते हैं तो अब इनसे बहस न कीजिए, अब इनसे क्या कहिए, फ़कुल तआलो न दौड़ अपना आना, तो अपने बच्चों को लाओ हम अपने बच्चों को लाते हैं, तुम अपनी औरतों को लाओ हम अपनी औरतों को लाते हैं, तुम अपने नफ्सों को लाओ हम अपने नफ्सों को लाते हैं, सुम्मा नबतहिल, फिर हम एक दूसरे को खुदा पर छोड़ दें। मुबाहले का माना है एक दूसरे को छोड़ देना, मुबाहले का माना और कुछ नहीं है। बहला अरबी जबान में यानी छोड़ देना, रिहा कर देना। जमलुन बाहिल, छोटा छूटा हुआ ऊंट होता रहता ना कि अरबों में दस्तूर होता था कि कुछ जानवर तो लोगों के मखसूस अपने होते थे, कुछ जानवर छूटे होते, जो चाहे इसका दूध दूह ले, कोई पाबंदी नहीं होती थी, चल रहा है क्यों खा पी रहा है, गाय चल रही है, ऊंट चल रहा है, भेड़ चल रही है, उसे कोई भी जिस जो भी चाहे उसका दूध दूह ले, पाबंदी नहीं। और एक नहीं तो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है, उसे कहते थे जमाल बाहिल, छूटा हुआ। तो मुबाहला का माना एक दूसरे को उसके हाल पर छोड़ देना, सुम्मा नबतहिल, एक दूसरे को हाल पर छोड़ दे, बहस वहस नहीं करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ, अल्लाह से कहेंगे खुदाया जो झूठा है। पैगंबर कहते हैं कि ईसा इब्नुल्लाह नहीं है, रसूलुल्लाह हैं, ईसाई कहते हैं ईसा इब्नुल्लाह हैं। अब जाहिर सी बात है दलीलें तो मान नहीं रहे हैं, इनमें से एक झूठा एक सच्चा है, इनमें से यकीनन एक झूठा है और एक सच्चा है। ईसाई समझते हैं कि वो सच्चे हैं, अलयाज़ु बिल्लाह हज़रत झूठे हैं, और हज़रत ये है कि ये झूठे हैं हम सच्चे हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं खुदाया जो झूठा है उस पर उसको उस पर तो अज़ाब नाज़िल कर दे, अपनी रहमत से दूर कर दे। तो ये बात कहाँ, ठीक है हम भी कबूल करते हैं, एक्सेप्ट, उन्होंने कबूल कर लिया फौरन। अब दूसरे दिन पैगंबर चले, किसको लेके जाना है, अपने बच्चों को, अबना जमा का सीगा है, ये जो है मुफरद नहीं है, इसमें अच्छी खासी गुंजाइश है, दीन से ज़्यादा कि इसके अंदर गुंजाइश पाई जाती है। निसाना भी जमा है, अनफुसना भी जमा है। पैगंबर लेके क्या चले हैं, अबना में दो बेटे हसन और हुसैन, निसाना में एक खातून हजरत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अनफुसना में एक मर्द अमीरुल मोमिनीन। या रसूलुल्लाह आपके पास अब तो अफराद की कमी नहीं है, माशाल्लाह लश्कर पूरा मौजूद है, जिससे आपने बद्र की जंग लड़ी है, उहद की जंग लड़ी है, खैबर व खंदक वगैरह सब मौजूद है माशाल्लाह से, जंग हुनैन में माशाल्लाह 16,000 सिपाही थे मुसलमानों के पास, उसमें से कोई लश्कर लेते आइए नहीं। शायद हुजूर कहेंगे कि ये असलहों की जंग नहीं है, ये दुआ की जंग है, ये हथियारों की जंग नहीं है, ये ईमान व यकीन की जंग है। इस मैदान में उसे लेकर के आना है जो ईमान और यकीन की आखिरी मेराज पर फायज हो, और इस क्वालिटी का हमारे पास इनके अलावा कोई नहीं है, अभी गुंजाइश मौजूद है। अच्छा मजे की बात यह, किसी ने आने की ख्वाहिश भी नहीं की, कोई कह देता है रसूलुल्लाह हम भी चलेंगे, अभी तो जगह है ना, तो गाड़ी खाली जा रही है, हमको बिठा दीजिए, अबनाना में भी जगह है, अनफुसना में भी जगह है, निसाना में भी जगह है, माशाल्लाह पैगंबर के अपना ख़ानदान कब थोड़ी था, अभी पैगंबर के चचा जिंदा हैं, जनाब अब्बास मौजूद हैं, पैगंबर के चचाओं की औलाद मौजूद है, और अज़वाज तो

ईमान भी दे रहा है, तुम रहे हो, रह रहे हो, सहूलतों से फायदा उठा रहे हो, तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी, तुम्हारी सिक्योरिटी हमारे जिम्मे है ना, फिर तो जब तुम हमारे मुल्क में रहोगे तो उसका खर्च तो देना पड़ेगा। हुजूर क्या खर्चा होगा, सुनिए क्या खर्चा लिया। नजरान पूरा एक शहर है, पूरा शहर मिलकर के कितना टैक्स देगा साल में, 40 जोड़ा कपड़ा, 40 माफ कीजिएगा हाँ, और 80 जोड़ा कपड़ा, और कपड़े की कीमत 40 दिरहम से ज्यादा नहीं होगी, नहीं 2000 जोड़ा कपड़ा, 2000 जोड़ा कपड़ा देना है, और कपड़े की कीमत क्या होगी, 40 दिरहम से ज्यादा नहीं, एक दिरहम एक तोला चांदी, कीमत समझ लीजिए, टोटल कितना देना है, 80,000 दिरहम साल में, वो भी दो किस्तों में, एक साथ नहीं देना है, दो किस्तों में, सफर और महर रजब, दो महीनों में इसको आधा आधा करके देना है, यानी शायद एक आदमी के ऊपर 10 दिरहम भी ना पड़ा होगा साल भर में। मुसलमान ज्यादा खुम्स व ज़कात देते थे या ये लोग जो है जिज़िया देते थे? बस दफा कहा जाता है ना कि वो अकलियत को आपने दबा दिया, कुचला है या उनको खुसूसी सहूलत दे दी गई है। हाँ, अगर जंग का जमाना आ गया तो आपको, अगर किसी ने इस्लाम पर हमला कर दिया, मुसलमानों पर हमला कर दिया, तो मुल्क जब जंग में फंस जाता है तो खर्चा तो बढ़ जाता है ना, आप भी इसी मुल्क में रह रहे हैं, मुल्क के तहफ़ के लिए आपको तो हिस्सा लेना पड़ेगा, लेकिन वक्ती मालूम है क्या मांगा गया उनसे, जंग के ज़माने में 30 ज़रा, 30 ये जो है क्या कहते हैं घोड़े, और 30 ऊँट, वो भी उधार देना है अमानतन, जंग के बाद आपको वापस कर देंगे, जंग के बाद आपको वापस कर देंगे। और अगर कोई घोड़ा काम आ गया मैदान में, कोई ऊंट मर गया, कोई ज़रा टूट गई, तो पैगंबर की ये जमानत है कि उसको दूसरी ज़रा उनको दे, दूसरा ऊंट उनको दे, दूसरा घोड़ा उनको दे, जमानत भी आ रही है, ये मजमूना इसे कहते हैं। और पैगंबर ने कहा कि हाँ देखो, अगर तुमने सूद खाने का कारोबार जारी रखा तो फिर हम तुम्हारे जिम्मेदार नहीं हैं, सूद पर तुमको पाबंदी लगानी पड़ेगी। ये है कुल मुबाहला का मामला। इस तरीके से इस्लाम फत व पीरोजी के साथ, अलबत्ता ये जो 70 अफराद का ग्रुप आया था इसमें से बहुत सारे बड़े लोग बाद में आकर के मुसलमान हो गए, उस वक्त उन्होंने इस्लाम का ऐलान इसलिए नहीं किया था कि वो अपनी कौम के नुमाइंदे बन के आए थे, नुमाइंदगी से जाकर के इस्तीफ़ा दिया, इस्तीफ़ा दे करके फिर आकर के मुसलमान हुए। ये सन 9 हिजरी 24 ज़िलहिज्जा, सन 8 हिजरी में फतह मक्का है, और ये 9 हिजरी का वाकया है मुबाहला का, कि ये वो मैदान था कि अगर आज यहाँ पर शिकस्त हो जाती तो मुसलमानों की शिकस्त न थी बल्कि इस्लाम की शिकस्त थी, इस्लाम की शिकस्त थी।